उसमें जो गायिका थी यानी कि आर्टिस्ट थे अंजलि जी और निशिभात ने बहुत खूबसूरती से जो गीत अदा किया था और साथ साथ में कुछ ड्यूट्स भी थे जिसमें अनुराग छा रहे थे और साथ साथ में हम डेनी और टी नंदन जी को भी याद करेंगे जिन्होंने भी एक संगीत उसमें प्रदान किया था। तो चलो तो बढ़िया से गया लेकिन आज के लिए ये सफ़र में फिर हम कुछ कोशिश करेंगे कुछ गीत सुनाने के लिए जो आशा ने गाए थे और आशा के विषय में बात हम करना चाहेंगे और इसके लिए हमारे जो स्टूडियो में ऑलरेडी पहुँच चुके हैं चेतना जी और साथ साथ में अनुराग। अनुराग शायद आज थोड़ा कम बात करेंगे, उसकी जो तबीयत उतने ठीक तो नहीं है, शायद उसने कुछ ज़्यादा ही गाना गा लिया था थर्सडे को, लेकिन चेतना जी ही इज़ प्रिपेयर्ड, थैंक यू फॉर कमिंग। हम इनसे भी सुनेंगे और हम आशा जी के विषय में बात करेंगे, उसके जो आई थिंक सफ़र है हम ज़्यादा करके फोकस करेंगे ऑन हर करियर, लाइक जो सॉन्ग्स उसने गाया है और काफ़ी खूबसूरती के साथ में उसने काफ़ी हम कहेंगे वर्सेटाइल जो सिंगर थी और हर तरह के हम कहेंगे गाना उसने गाए, बट उसके जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो चेतना जी आज देने वाली है और भी हम इंतज़ार कर रहे हैं और एक गेस्ट हमारे साथ में जुड़ने वाली है जो अंजलि, और हम आशा करते हैं कि अगर वो हमें गाड़ी में सुन रही है तो आप पहुँचिए फिर हम आपसे भी गाना गवाएंगे। और एक चीज़ और बतला दें कि अगर आप जाने की कोशिश करो या जाना चाहते हो तो जी हाँ, एक जो प्रोग्राम

आज हो रहा है इन द डिवाइन प्रेजेंस ऑफ सिद्धगुरु सिद्धेश्वर राम ऋषि गुरुदेव. उसका जो प्रोग्राम है यहाँ रोल्स्टन में, तो वहाँ भी आप जा सकते हो. रोल्स्टन कम्युनिटी सेंटर अभी भी समय है, आई थिंक वो लोग 9 PM तक वहाँ पे चलेगा. तो अगर इफ यू डू वांट टू गो देयर यू कैन. और साथ साथ में हमारे पास और भी जो समाचार है हम आपके साथ में शेयर करते चलेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं. लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सुपर सीरीज का जो गेम अभी चल रहा है लाइफ फिजी एंड रुआ और हाइलैंडर्स के बीच में, आई नो हमारे साथ में शिवनील भी शामिल है ऑब्वियसली फिजी और रग्बी में उसका जो दिलचस्प है. तो शिवनील अभी अनफॉर्चुनेटली हाइलैंडर्स अब जीतना शुरू कर दिए हैं तो 14-12 अभी स्कोर है. तो चलो हम एक गीत आपको सुनाते हैं फिर हम जो ये इंटरव्यू आप कह सकते हैं, हाँ बातचीत हम शुरू करेंगे जब हम चेतना जी और अनुराग से बात करेंगे इससे गीत के बाद में.

0: जी हाँ दोस्तों सदियों, आशा करते हैं कि जो गीत अभी आप सुन रहे थे, जो आशा भोसले ने बहुत खूबसूरती के साथ में अदा किया था 1957 की बातें, और बहुत ही जो बेहतरीन गीत था, जो आज भी आई थिंक अगर आप इस गीत को सुनेंगे तो वो जो फ्रेशनेस है, एनर्जी अभी भी आपको जो मिलेगी। तो चलो हमारे जो गेस्ट है बिल्कुल तैयार आज बात करने के लिए, तो चलो हम शुरू करते हैं चेतना जी से। तो आप बताइए चेतना जी, अभी आप कैसे महसूस कर रहे हो?
1: परफेक्ट, बहुत खुश टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आके हमेशा की तरह, और फीलिंग ब्लेस्ड टू बी एबल टू स्पीक अबाउट आशा भोंसले जी।
0: थैंक यू सो मच चेतना जी। और अंजलि जी आप बताइए, आपका क्या मिजाज है?

0: आशा भोसले जी के बात बारे में बात करना ही अपने आप में एक बहुत सुकून वाली बात है, तो मैं ऑनर्ड फील कर रही हूँ कि आज मुझे मौका मिला उनके बारे में रेडियो पे बात करने का. सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी विनेश जी.
1: जी हाँ, और अनुराग जी, हम आपसे कितना बात कर सकते हैं आज?
2: देखिए, जितनी क्षमता में बात करूँगा, सबसे पहले तो आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ विनेश जी, कि आपने आशा जी के बारे में प्रोग्राम होस्ट किया है और उसमें हमें इनवाइट किया है. वी आर रियली ग्रेटफुल. आशा जी के लिए कुछ बोलना यानी सूरज को दिया दिखाने जैसी बात होगी, तो इसमें हमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़े. डेफिनेटली वी आर लकी एंड फील ब्लेस्ड. सो जलसा फीजी रेडियो के श्रोताओं को सबसे पहले हमारा प्यार भरा नमस्कार. और हमने पीछे 12 तारीख को इसी महीने, अब तो पिछले महीने 12 तारीख को आशा जी को खो दिया, तो हमारे इंडियन म्यूजिक का, बॉलीवुड का एक सितारा, हमने जो उस लेजेंडरी एरा का जो आखिरी सितारा अब तक था, हमने वो भी खो दिया. तो वो हमेशा हमारी सांसों में बसी रहेंगी. आशा जी के बारे में मतलब बात वही है कि उनके बारे में बोलना शुरू भी नहीं किया है, और हमें ये लग रहा है कि क्या हम जस्टिस भी कर पाएंगे उनके बारे में कुछ बोलने के बारे में. आई रियली डू नॉट नो. हम जो भी कुछ उनके बारे में हम शेयर कर पाए, हमारा एक छोटा सा ट्रिब्यूट होगा. तो विनेश जी के साथ हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं.
1: जी हाँ, बिल्कुल. तो हम क्या करते हैं कि हम और क्या गीत आपको सुनाएंगे, और जैसे गीत जो खत्म होगा, हम नेक्स्ट जब अपने जो गेस्ट अंजलि है, चेतना है, अनुराग से हम जब बात करना शुरू करें, दिस वेन वी आर गोइंग टू स्विच लाइव, हम फेसबुक लाइव भी कर देंगे, ताकि जो लोग हमें वीडियो पे देखना चाहे, या तो फिर अंजलि और चेतना है, अनुराग है, यू कैन गेट एंगेज्ड विद अस. तो हम फेसबुक लाइव करने वाले हैं. तो आई विल प्ले दिस सॉन्ग, आप सुनते रहिए, तब तक हम तैयार होते हैं लाइव वीडियो के लिए.

0: फिजी रेडियो के लाइव प्रोग्राम में जो लोग हम भी हमारे साथ में शामिल हो रहे हैं ऑन जलसा फिजी रेडियो लाइव, आपको भी हम स्वागत करते हैं. और जो लोग हमारे साथ में अभी तक फ्रीक्वेंसी पे जुड़े हुए थे तो हम उनसे वही बात कर रहे थे कि ये जो प्रोग्राम है हम डेडिकेट कर रहे हैं आशा भोसले जी की याद में. और हमारे साथ में जो गेस्ट है जुड़ चुके हैं, अंजलि जी है, चेतना जी है और अनुराग, सभी रोल्स्टन के निवासी है. सभी लोग यहाँ पे आ पहुँचे हैं और ये लोग आज हमें सपोर्ट करने वाले हैं इस जो स्टूडियो में. और जी हाँ, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि अभी जो हमारा जो टैलेंट सीरीज हुआ है उसके विषय में बात करें तो हम आपसे आपका व्यूज भी लेंगे. लेकिन जो लोग अभी हमारे साथ में शामिल हो रहे हैं अगर उन्हें जाना है तो आपको प्रोग्राम भी बता देते हैं कि रोल्स्टन में अभी भी प्रोग्राम चल रहा है. सिद्धगुरु सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरुदेव का जो प्रोग्राम अभी भी है चल रहा है, गोइंग ऑन एट द मोमेंट रोल्स्टन में, रोल्स्टन कम्युनिटी सेंटर. अगर आपको जाना तो अभी भी आप जा सकते हो, तो अभी भी आपके पास मौका है जाने के लिए. और जो लोग रग्बी में इंटरेस्टेड है तो वंस अगेन शिवनील जी जो हमारे जो कैमरा के पीछे है, तो गुड न्यूज फॉर यू बिकॉज फिजी एंड ध्रुआ इज नाउ विनिंग 24 और हाईलैंडर्स 14. सो लेट्स होप ध्रुआ कैन विन दिस वन. अ बिट ऑफ बैड लक टू क्रुसेडर्स यस्टरडे, वी लॉस्ट, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. तो चलो हम इस प्रोग्राम को आगे लेते हैं. और अभी हम फ्रीक्वेंसी पे बात ही कर रहे थे अनुराग जी से, उसकी तबीयत थोड़ा उतना ठीक आज नहीं है. चेतना जी शी इज लुकिंग फ्रेश टुडे, तो फुली प्रिपेयर्ड आई हुई है. और फिर हमारे साथ अंजलि है जो कुछ जो आशा भोसले के कुछ जो गीत है गुनगुनाएगी. और इससे पहले हम अपने जो गेस्ट से बात करें, हम शुक्रिया करना चाहेंगे अपने स्पॉन्सर्स को जिसके वजह से हम ये जो प्रोग्राम कर पा रहे हैं, विच इज़ जनरेशन होम्स. विवेक श्रीवास्तव है, संदीप है, सेरा, सभी को याद करना चाहेंगे. लाइफ स्टाइल सोल्यूशन रिचर्ड सेवक, आपको याद करना चाहेंगे. वरुण जी फ्रॉम नेक्स्ट स्टेप अकाउंटिंग, रोहित सजय देवा, बेटर चॉइस होम लोन्स, एनजे फ्लेम्स के हमारे जो दोस्त हैं नीर जी और फिन फेया, गो वाइज ड्राइविंग, आपको भी हम याद करना चाहेंगे. टी नंजन जी, अंशुल गुप्ता, क्लाइन रियल स्टेट और मेजेस्टिक स्टेज, मोनिल जी आपको भी याद करना चाहेंगे. और डेनी जी फ्रॉम ऑन द गो ईस्ट गेट, सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस ताकि हम ये जो कम्युनिटी है रेडियो इसी तरह हम कंटिन्यू कर सके. तो अंजलि जी, आप यू आर प्रीटी एक्साइटेड, होपफुली आपका जो रात्रि यानी कि जो शो अच्छी तरह बीता.
1: बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी विनेश जी, इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस. बहुत हम्बल्ड एंड ऑनर्ड फील किया इस शो का हिस्सा बन के.
0: थैंक यू फॉर सपोर्ट अंजलि, बिकॉज जब भी हम आपको याद करते हैं आप बिल्कुल तैयार होते हो और आप हर वक्त व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक यू आर ऑलवेज एक्साइटेड. ऐसा और अनुराग का जो योगदान रहता है एंड ही इज देयर टू इंस्टिल द एनर्जी, बिकॉज मुझे तो गीत वगैरह गाना वगैरह आता नहीं है, सो आई एम बेसिकली रिलाइंग ऑन हिम टू मेक श्योर कि जो ट्रैक वगैरह सही जा रहा है. एंड ऑफ कोर्स साहिल इज डूइंग अ गुड जॉब फॉर इट.
2: इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का महा अवार्ड है वो भी उन्हें दिया गया है. सो ये अवार्ड्स एक यू नो, जब हम अपने फिल्मी करियर में होते हैं और इस तरह के अवार्ड्स जब हमें मिलते हैं तो ये एक छोटा सा नजराना तरीके का होता है जो हमें थोड़ा सा खुशी देता है. बट हाँ, जितने गाने आशा जी ने गाए हैं उन्होंने शायद इंडियन लैंग्वेजेस की सारी जितनी भी वर्णमालाएं और जितने भी लैंग्वेजेस हैं सभी लैंग्वेजेस में उन्होंने गाने गाए हैं, सबसे ज्यादा गाने गाए हैं. उनका वर्ल्ड गिनीज बुक में भी नाम है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग्स उन्होंने गाया है. मैं अपनी जर्नी जरूर शेयर करता रहूंगा जितना मेरे से बन पड़ेगा, लेकिन मैं आगे माइक पास ऑन करना चाहूंगा हमारे साथियों के पास में भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी अपना अपना जरूर शेयर करेंगे.
0: जी हाँ बिल्कुल. और चेतना जी, अनुराग, मैंने सवाल पे आपसे पहले पूछा नहीं पूछा, बट आप मेरी तरह गीत गाते हो या अनुराग और अंजलि की तरह गीत गाते हो?
1: मैं बिल्कुल आप ही के गैंग में हूँ.
0: मेरे गैंग में, ओके.
1: लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहती हूँ अंजलि और अनुराग कर क्या सकते हैं आपके और मेरे बिना.
0: जी हाँ ये बात तो सही है, भी सुनने वाला भी कोई चाहिए ना,
1: और ऑर्गेनाइज करने वाला भी तो कोई चाहिए.
0: जी हाँ,
1: मौका लगे तो सबसे इम्पोर्टेंट है आई वुड से कि आप जो नए टैलेंट और नए लोगों को इतना एनकरेज करते हैं और उनको प्लेटफॉर्म देते हैं कि आके वो अपना टैलेंट दिखा सकें और इंस्पायर कर सकें और लोगों को, विच इज अमेजिंग. उसके बिना घर में गाना तो आई एम श्योर

चरों ते इरन की याई इने यहो तो ये आप ही आरुते आओ आप ही अंग तारव के यार चनात पिपीरे तो तो को तो पिपीरे अच्छे आखर कर मी तो गोदू का तो ते खारे ना ताता तो गया करने ती तो आते होते होता है इरुते ते मैं ती वरुण और तुमा अरे मैं की इरुते ती और न तातो कोई को हेजिंग ए चेनियो मने ते खारे ने रिया अ चेनियो ते उरा आई कोई को तो पाई दे ते उरा मो तो पतो मेरे ए वाकतानो ये मेरे को ते तानी ते को तारा इतु ये रुंगे ते खारे ना Ya kape eh mene ti ni yo. Ti to ratu mena ko nga kape ki ra tu tiri. Ari pe ki ra tu tiri. Karu ra ta tu puro te u pu. Ato ti ni yo te u tek. Ya to ko tu mena ko. Ya to ko tu mena ko te u tek. Ma ko tu mena ko ti no ta tu. Ma ka ta tu ka ni ke tu ki mu. Karu ngono mai. Ite re u imene ta te tu ina ngoro. Ki a karu ngoro ka tu ti a tu.